0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, और खुदा मोमिनों पर मेहरबान है।

0: उसमें अबदुल आबाद रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार।
1: यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यकूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला।
0: जिस दिन उनके मुंह आग में उलटाए जाएं, कहेंगे ऐ काश हम खुदा की फरमाबरदारी करते और रसूल खुदा का हुक्म मानते।

वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं विलादत बासआदत और हयात तैयबा के 40 साल की। वाकया शिक्के सदर, इस तरह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम मुद्दते रजात ख़त्म होने के बाद भी बनू साद ही में रहे, यहाँ तक कि विलादत के चौथे या पांचवें साल शिक्के सदर सीना मुबारक चाक किए जाने का वाकया पेश आया। इसकी तफसील हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही मुस्लिम में मरवी है

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है यूसीपी की दुनिया आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। माई नेम इज डॉक्टर फैसल तूसी एंड माई co-host टुडे इज डॉक्टर सतीश ईशान। वी आर बोथ फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग इन जनरल एंड इंजीनियरिंग एट यूसीपी। सो वी जस्ट लेफ्ट ऑफ ऑन अ पॉइंट अबाउट रिलेटेड टू CS एंड इंजीनियरिंग। सो यस, अ पॉइंट दैट यू मेंशनड अर्लियर दैट an engineering graduate basically studying engineering gives you a certain mindset and certain problem solving mindset and gives you certain skills to be able to, which helps you analytically look into any matter. So anyone who goes through engineering can easily pick up the subject matter of any other field, pretty much, well, within reason, of course, which is why you see a lot of engineering graduates and who end up doing their master's degree or even their PhD
2: that
1: in computer science.
2: That is true.
1: Because we have most of the requisite knowledge for studying computer science and so on. And at the same time, you see a lot of engineering graduates doing their MBA, because once you've been through that 4-year degree program of engineering, doing an MBA isn't all that too difficult for you. And it really adds to your profile if you're working in the industry. So we were also talking about the scope of engineering in general. So इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है। मैं हमेशा यंग लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि देखें, आप अपना इंटरेस्ट देखें। अब लोगों से सिर्फ सुन के आप ना देखें कि इस फील्ड में ट्रेंड ज़्यादा है या उस फील्ड में ट्रेंड कम हो गया है। बिकॉज अ लॉट ऑफ आर यूथ आर जस्ट रशिंग टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंप्यूटर साइंस इज रियली अबाउट। चीज़ तो बहुत अच्छी है, बट इसका स्कोप पाकिस्तान में वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद इतना नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा है जितना कि अब ग्रेजुएट्स निकलना शुरू होंगे अगले चंद सालों में। ऑन द अदर एंड, क्योंकि रुझान इंजीनियरिंग तक कम हो गया है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू एडमिशंस, तो दूसरी तरफ चंद सालों में इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब्स बहुत ज्यादा निकलना शुरू होंगे। सो इट्स गोना बी दिस काइंड ऑफ अ पुश एंड पुल इफेक्ट।
2: सर, मुझे ये लगता है कि जैसे कि वर्ल्ड डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं और लोग जिस तरह ऑटोनोमस और ऑटोमेटिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे कि अब हमें एक शिफ्ट नज़र आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, ईवी, सस्टेनेबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। आप देखते हैं कि अब पाकिस्तान में भी बड़ा कॉमनली नज़र आता है कि सोलर घरों में भी, रेजिडेंशियल में भी बहुत कॉमनली नज़र आते हैं। तो ये सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी से की तरफ जो सारी जो वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना और ये डिवाइसेस को, ये सारी चीजें जो है, मुझे नहीं लगता उससे इंजीनियरिंग की ट्रेंड में कोई कमी आएगी इन फ्यूचर। बल्कि मुझे इनफैक्ट लगता है कि बिकॉज वी नीड मोर ऑटोनॉमस मशीन्स एंड वी नीड मोर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, तो ये ट्रेंड मजीद बढ़ेगा विद टाइम एज कम्पेयर टू अभी करंटली जो हमारा सिनेरियो चल रहा है।
1: Software is only one part of the solution. Software basically needs first of all, it needs to run on hardware.
2: Correct.
1: And it's only one part of the whole solution, which means basically पीछे कोई ना कोई किसी hardware को drive कर रहा होगा. And that hardware has to be made by engineers. Like you mentioned the Tesla car, so excellent example. So for those of you who don't know, basically Tesla is a company owned by Elon Musk.
2: I think they would know. I think everybody knows Elon Musk, right?
1: Yeah.
2: So I'm sure right now is, in engineering is familiar.
1: He's literally the richest man in the world right now. And so Tesla basically makes, up till now, makes the most popular electric vehicles in the world. Now, so uska jo software hai, theek hai, wo the software engineers likh lenge. But then they will need a whole multitude of different types of engineers, for example, electronics engineers, mechanical engineers,
2: right,
1: material engineers, and so on, before to be able to design and create a car like that. So, like I said, software is only part of the whole equation. Engineering basically completes the whole product. So, uske liye puri team chahiye hoti hai, sirf software wale nahi. And like I mentioned before, a lot of engineers basically after graduating, they actually become software engineers too, because they can do those jobs, maybe with a little bit of training or and so on.
2: Probably kehna chah rahe ki engineer to software ka kaam kar sakta hai, software engineer kaam kar sakta hai, lekin ek software engineer ka kaam nahi kar sakta, ek CS student engineer kaam nahi kar sakta.
1: Bilkul aisa hi hai.
2: और ये बात सही है। एक तब हमने जब कोरोना आया था, हमने देखा था कि एकदम जो सबसे पहले अगर आपको याद हो, जो शॉर्टेज आई थी वेंटिलेटर्स की आई थी, हम एकदम वी नीडेड ऑल दोस मशीन्स, एंड इवेंचुअली द गवर्नमेंट वाज पुशिंग पाकिस्तानी इंजीनियर्स टू मेक मशीन्स लाइक वेंटिलेटर्स एंड स्टफ एंड ड्रोन्स फॉर स्प्रेइंग एंड फॉर क्लेंजिंग। आपने आपको अगर याद हो तो यूनिवर्सिटीज में एकदम वो स्प्रेड हुई थी खबर कि हाँ जी दे वॉन्ट टू मेक मशीन्स रिलेटेड टू दैट। तो मैं वही कह रही हूँ कि इंजीनियर जो है बेसिकली आपने जो भी मशीन्स और जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं वो इंजीनियर्स की तरफ से ही यूजली आते हैं और उनकी तरफ ही देखा जाता है ऐसे टाइम्स ऑफ क्राइसिस में फॉर सॉल्यूशंस.
1: जी मुझे अभी तक याद है यू मेंशन द वेंटिलेटर थिंग ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक. उससे बल्कि एचईसी की तरफ से एक फंडिंग कॉल आई थी जिसमें बहुत जल्दी फंड करना चाहते थे, बहुत जल्दी इनको प्रोडक्ट चाहिए था. एंड आई अप्रोच्ड एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इस तरीके से कि भैया हम करना चाह रहे हैं तो वी कैन वर्क विद यू. उस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में कम थे उस वक्त. ही हैड ऑलरेडी बी द सीईओ ऑफ द कंपनी सेड दैट ही हैड ऑलरेडी बीन अप्रोच्ड बाय टू अदर पार्टीज कि भैया ये हमने बनाना है, इस फंड के लिए अप्लाई करना है. सो यस, when it comes to making certain solutions, only engineers can do that. Obviously software engineers company jagah importance hai and unke bagair bhi kaam to mukammal nahi hota, but then again it's just part of the equation, not the whole equation as some people believe these days. So now let's talk about engineering at UCP now.
2: ji bilkul, aapne ye to bata di ki engineering important hai. अब मुझे ये बताएं इंजीनियरिंग यूसीपी में क्यों कि यहाँ वहाँ पे क्या खसूसियात हैं और इंजीनियरिंग में ऐसी क्या खास, हम इंजीनियरिंग में क्या स्पेशल हम और क्या हमारे हाइलाइट्स हैं जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के जो कि थोड़े से डिफरेंट है या आप कह सकते हैं प्रोएक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान.
1: जी, सो द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग स्टार्टेड इन यूसीपी इन 2003. इतना यानी कि प्रीटी मच यानी कि यूसीबी बनने के कोई साल बाद हमारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू हो गया था, पर्टिकुलरली बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. एंड द वेरी फर्स्ट बैच बेसिकली जिसको हम कहते हैं FO3, दैट वाज अ बैच व्हिच इज स्टिल आई एम स्टिल इन क्लोजली इन टच विद बिकॉज दोज आर द स्पेशली द फर्स्ट फ्यू बैचेस ऑफ कोर्स दे आर स्टिल वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड since then every degree program was accredited by the Pakistan Engineering Council and us waqt ek journey shuru hui thi faculty of engineering ki up till now and now we have us waqt hamare paas 3 ya 4 labs hai, now we have 12 different labs
2: in electrical engineering.
1: Electrical ka ye sirf electrical ka bata raha hu.
2: Theek,
1: we have an electronics lab, an electrical machines lab, an electrical power lab, we have a telecommunications lab, we have an instrumentation and controls lab, we have a computer engineering lab, then we have a project lab, just to name a few. And now we consider the jewel in our crown, space technology lab as well.
2: Really interesting. Yes. Very nice.
1: So we have one of our faculty members, Dr. Kamran Saleem, he has funding now from two different government sources and he's doing research in space technology, particularly in satellite technology.
2: Space, that's something new for electrical engineering program in Pakistan.
1: Yes, it is. And he has different research assistants working for him and multiple projects, ongoing projects, which is actually he is making what we call cube satellites. And those are small miniature satellites, basically, which are fully functional and can be launched into space and meant for communication. So we have all that and he's doing an amazing job. So anyone basically who joins UCP will also be taking coursework and be able to work with Dr. Kamran Saleem in that lab, which like I mentioned has close to 10 million rupees of funding right now, but yeah, approximately 9 million to be more exact. So that's one of the highlights.
2: Jaise aapne electrical ka bataya to mechanical ka I'm aware ki wahan pe 13 state of the art labs hain aur isme design ke latest softwares wagera jaise ki SolidWorks ho gaye, ANSYS wagera karaya jata hai. Iske alawa we have engines and power plants ke jo device ke jo chote chote parts hote hain wo bhi hum uske different machines wagera par hi jati hain. To basically aap kehna cha rahe UCP mein hum unko modern skills jo hai wo hum sikha rahe hain taki wo bilkul market ready rahe jab wo yahan se graduate kare. तो इसलिए हमारे जो फैसिलिटीज हैं यूसीपी में इट इज नॉट सेकंड टू एनी अदर यूनिवर्सिटी.
1: आई कैन प्राउडली से दैट किसी के लैब्स हमसे बेहतर नहीं है एंड दीज लैब्स बेसिकली वी बीन डेवलपिंग दीज लैब्स फॉर प्रीटी वेल मोर देन 20 इयर्स नाउ एंड यस दे आर एज गुड एज एनी लैब्स इन लाहौर एंड दे आर स्पेशियस एंड दे आर वेल इक्विप्ड. फिर आपने ठीक है आपने फैसिलिटीज की बात की, सो यस यूसीपी इटसेल्फ हैज अ वेरी अपस्केल एंड वेल इक्विप्ड बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो भी हमारे कैंपस को विजिट करेगा उनको ये साफ वाजे हो जाएगा. ऑल एक्सलेंट फैसिलिटीज ऑन कैंपस, लाइक वी हैव अ सेपरेट जिमनेजियम फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स, वी हैव आवर ओन इंडोर स्विमिंग पूल विद अ प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्लांट and anything you imagine.
2: Library.
1: Oh, yes.
2: I think it's simply once you go to the library, मुझे बड़ी कम लाइब्रेरी पसंद आती है, बट यूसीपी हैज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वंस.
1: यस, यूसीपी हैज अ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी एंड इट्स वेरी वेल केप्ट एंड वेरी वेल मैनेज्ड. वहां जाके बैठने को दिल करता है, बैठ के पढ़ने को दिल करता है, ऐसा है. और वहां पे भी अक्सर बल्कि जगह वो भरी हुई होती है, स्टूडेंट्स वहां से जब जाते हैं वो भी वहां बैठना पसंद करते हैं. यस, इट्स अ लवली लाइब्रेरी एंड डिस्पाइट ऑल दीज फैसिलिटीज यूसीपी ऑफर्स मल्टीपल स्कॉलरशिप्स टू इट्स स्टूडेंट्स. And they are merit-based scholarships. They are basically, depending on where you graduated from, for example, if you're part of the, coming in from the Punjab group, there's called separate scholarships for that, and so on and so forth. And need-based scholarships, and obviously students can take care of the government honours scholarships as well. So,
2: तो अगर एक स्टूडेंट एक अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेता है, एडमिशन क्राइटेरिया पे उतर जाता है, तो he's eligible for all these scholarships?
1: Yes, he is.
2: And where can exactly he get this information, he or she can get this information about scholarships? Is it available on the website?
1: Yes, ucp.edu.pk, our website, and all the information is available over there. You can visit our main campus at any time. You can just visit the student services center, which will give them all the information, the admissions office. They can help them with all of that. So all of this is available online in the prospectus. And yes, multiple scholarships across the board for every faculty and for different offered for different categories. Just so I mentioned a whole bunch of jobs which our electrical engineering graduates end up doing. Let's talk about the mechanical engineering graduates. Like, for example, what kind of companies do they end up joining, or kis kisam ke wo phir nature of work unka kya hota hai?
2: बिल्कुल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर वी हैव डिज़ाइन बेस्ड जॉब्स. अगर आपको सॉलिड वर्क्स आता है, आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर ओन बिजनेस. प्लस यू कैन गो इनटू मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, यू कैन गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग. आप अगर ISO, जैसे कि आपको पता है डिफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं हमारे अराउंड द वर्ल्ड, तो आप क्वालिटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं एंड यू कैन गो इनटू दैट एरिया. एनर्जी के हमारे ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो आप उसको स्टडी करके, हम वो भी स्टडी करवाते हैं, एंड यू कैन गो इनटू दैट डोमेन. और यू कैन ऑल्सो गो इनटू मैनेजरल रोल्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. वी सी अ लॉट ऑफ आवर ग्रेजुएट्स हु हैव डन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आफ्टर, एंड वी हैव अ कोर्स ऑफ दैट that we're offering in engineering. Plus, obviously, you can go into power plant engineering, HVAC, and automotive industry. So, separate hai hai, bilkul, we are the top recruits jo hote hain automotive engineering mein, wo aapko mechanical engineering nazar aayenge.
1: So, on that note of project management, I think it'll be a good idea to talk about our diversified curriculum. So, obviously, we our degrees are in electrical engineering, mechanical engineering, and civil engineering and robotics. But we don't just teach technical courses. It's a well-balanced curriculum over 4 years in which we teach different, English language courses mainly related to professional communication, communication skills in general. So different courses on that. We also teach, obviously, we are required to, and which I think is a good thing as well, that we teach Islamiyat and Pak studies throughout the curriculum.
2: And we do focus on not just technical skills, as you mentioned. We have five-year projects at the end of every degree. इसमें जिसमें बच्चों ने जो कुछ सीखा होता है वो आप उसको बकायदा practically implement करके, you can make a project which can then turn into your future business also if you want.
1: Of course, which is why we teach different managerial management projects as well. We teach them engineering economics. We teach them project management.
2: Entrepreneurship.
1: We teach them, yes, of course, on entrepreneurship for the पर्पस ये होता है कि वो ग्रेजुएट करने के बाद वो सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ टेक्निकल काम करना चाहे, वो कुछ भी कर सकते हैं. एंड यस, द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज अ वेरी, एंड यस ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट, वी आल्सो टीच देम एथिक्स एंड अदर अदर सोशल साइंसेज कोर्सेज. सो इट्स वर्सटाइल, इट्स डाइवर्सिफाइड, इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल.
2: You're right, and और इसीलिए हमने देखा है कि UCP का जब ग्रेजुएट यहाँ से स्पेशल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जब मार्केट में जाता है, यहाँ हमें बहुत से ज्यादा एम्प्लॉयज से भी फीडबैक मिलता है कि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ स्किल्ड है बल्कि बड़े वेल ग्रूम्ड, एंड जो सॉफ्ट स्किल्स जिसे हम कहते हैं उसमें भी कदरे बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू मे बी सम अदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज.
1: So let's talk about those final year projects which you just mentioned, a very important point and a very strong point for any engineering graduate. So just to give our listeners an overview, all engineering students basically in their final year of engineering do something that we call a final year FYDP, final year design project. वो पूरा साल चलता है, यानी कि दो semesters के span होता है. तो उसमें क्या करते हैं कि वो एक idea एक प्रोजेक्ट पूरा बनाते हैं स्टार्टिंग विद एन आइडिया, उसके फिर डिजाइन होती है, उसके फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और फिर उसके बाद वो उसके फिर फंक्शनिंग होती है एंड देन टेस्टिंग एंड सो ऑन बेसिकली एंड पे ऑब्वियसली उसके फिर इवेल्यूएशन होती है. वो जो प्रोजेक्ट होता है वो आइडिया से लेके समझें कि कंप्लीट एक प्रोडक्ट वो बना के निकालते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड व्हाइल दे डूइंग दैट उसको जो सबसे बड़ा वेल ऑब्वियसली वो एक चीज़ बना के तो पेश करते हैं वो तो एक अपनी जगह चीज़ है, बट दे एंड अप इन दैट फाइनली प्रोजेक्ट दे एंड अप अप्लाइंग all their skills and all their knowledge that they learned in the first 3 years in one particular project, which we'll touch upon again in a few minutes. Now it's time for another music break.

0: renewable energy, control of electrical machines and power electronics. So we have faculty members who are experts in this domain. Photovoltaic cells, basically, which is a basic building block of solar cells. And yeah, we have a faculty member who literally did his PhD in photovoltaic-based systems. And of course, then there's myself, who is into signal processing and audio engineering and Internet of Things. And we have other faculty members, basically, who have industrial experience, who can help with, who are experts in electronics and communications. Of course, we have the gentleman who's heading the Space Technology Research Center. Obviously, he has expertise in all forms of telecommunications and, of course, satellite technologies.
1: बिल्कुल सही. एंड हमारी भी इधर अगर हम देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वी हैव एक्सपर्टीज इन एनर्जी सेक्टर, इनसाइड डिजाइन में हमारे पास है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वी हैव डिफरेंट फैकल्टीज हु हैव एक्सपर्टीज इन दैट. और यही वजह है मुझे लगता है कि बिकॉज वी हैव सच अ डाइवर्स एंड क्वालिफाइड फैकल्टी दैट जो UCP ग्रेजुएट्स हैं वो, एंड विद द हेल्प ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो UCP प्रोवाइड करता है, वी आर एबल टू क्रिएट ग्रेजुएट्स विच आर हाईली स्किल्ड एंड totally market ready and very competent when they enter the market. What is your intake on that?
0: Most definitely, yes. I mean, 100%. Like recently, one of our own graduates completed his PhD and his work was all related to applied machine learning. And now, through him and basically and one or two other of our faculty members, we are offering extensive and very well-written coursework in machine learning and artificial intelligence. And not only that, we're also conducting research in machine learning and artificial intelligence too, through our own PhD students and our MSc students at the same time. So yes, our graduates will definitely, when they graduate, they will have all the required skills to meet the demands of today's industry. And I'm confident that they will do well and be successful in life.
1: जी बिल्कुल. और बिल्कुल इंजीनियर के इससे आई वुड लाइक टू ऑल्सो एड एन एंडिंग नोट ओवर हियर दैट देयर वाज अ वर्ल्ड सर्वे. और आपको जान के खुशी होगी कि जो दुनिया में सेकंड मोस्ट सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं उनकी जो डिग्री होती है वो इंजीनियरिंग है. एंड विद दैट वी वुड लाइक टू एंड दिस प्रोग्राम. थैंक यू फॉर लिसनिंग.
0: थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग. सो साइनिंग ऑफ टुडे इज डॉक्टर फैसल तूसी एंड
1: डॉक्टर सदफ जीशान.
0: यूसीबी की दुनिया.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूं आजम तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं नबील नासिर। खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे शो नई दुनिया में। जी हाँ, नई दुनिया, जिसमें होती है नई दुनिया में होने वाली बहुत सी टेक्नोलॉजी की बातें, आपकी बातें, मेरी बातें, और इंसान को टेक्नोलॉजी किस तरीके से मुफीद कर रही है उसकी बातें। मेरे साथ मौजूद हैं नबील भाई। नबील भाई, क्या हाल है आपके?
3: अल्हम्दुलिल्लाह आजम, आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो ओवरऑल कैसा चल रहा है सब कुछ?
3: बस जिंदगी जो है ये बस ऑपोजिट्स के साथ ही चल रही होती है। अच्छे की अहमियत तब तक होती है जब तक बुरा हो, तो बस अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अच्छा नबील भाई, आप बताइएगा हमारे सामीन को कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता शोज में बड़े मजेदार टॉपिक्स लेके आए हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंसानों को फायदा पहुंचा रही है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से एग्रीकल्चर में फायदा पहुंचाती है, और टेक्नोलॉजी जिंदगी के इंसान के किस किस पहलुओं में इंसान को फायदा पहुंचा रही है, आज किस टॉपिक को लेके आए हैं आप सामीन की खिदमत में?
3: बिल्कुल, हमने जैसे गुज़िश्ता एपिसोड्स में भी टेक्नोलॉजी के फायदों पर बात की, टेक्नोलॉजी के नुकसानात पर भी बात की, आज भी थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी के हवाले से ही बात करेंगे। जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम भी नई दुनिया है, तो नई दुनिया के मसाइल और नई दुनिया के फायदे और तमाम चीज़ों की बात करते हुए हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम पास्ट में जाएं और बैकग्राउंड देखें, तो आपने देखा होगा कि पहले लोगों का इन्हिसार एग्रीकल्चर पर होता था, और एग्रीकल्चर से ही वो अपनी प्रोडक्शन और तमाम लाइवलीहुड्स देख रहे होते थे, अपने तमाम अखराजात को देख रहे होते थे। फिर एक दौर आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और इंडस्ट्री लगी, और हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हुई और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ लगें, और उसके समरात जो हैं वो हमने देखे, उसके नुकसानात भी देखे। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पिछला गुज़िश्ता दो दहाइयों में बहुत ज़्यादा बूम है, एक टेक्नोलॉजी में एक बूस्ट है, तो यकीनन इसकी इंडस्ट्री में भी बूस्ट है। इसकी इंडस्ट्री हमें एस्टेब्लिश किसी हद तक होती भी नज़र आ रही है, कुछ हद तक हो भी गई है, तो बहुत सी चीज़ें इसकी इंडस्ट्री के हवाले से भी हैं। तो एक्चुअली आज जिस हम टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है। जी आजम,
2: बिल्कुल ऐसे ही है नबील भाई, जिस तरीके से आपने बात की कि जो तरक्की है और जो टेक्नोलॉजी है, आप देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी है वो इस टाइम पे इंसानी तरक्की की आई थिंक चोटी पे होगी, जिस तरीके से वो डे बाय डे आगे प्रोग्रेस कर रही है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भी इसी के अराउंड हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंडस्ट्री में किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा रही है। तो कुछ उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग डाटा पे। नबील भाई, बिग डाटा के बारे में बताइएगा कि बिग डाटा होता क्या है।
3: अच्छा, आपने बहुत अच्छा पहला जो है वो पॉइंट रेज किया है, बिग डाटा। डाटा बहुत ज्यादा रोल अदा कर रहा होता है टेक्नोलॉजी में और मुख्तलिफ पहलुओं में, टेक्नोलॉजी में भी और उसके अलावा भी। लेकिन मेरे ख्याल से हम सामीन के लिए थोड़ा सा डाटा को समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा है क्या। एक्चुअली हमारे पास कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका रॉ मटेरियल मौजूद होता है, डाटा भी इसी तरह की एक चीज़ है। हमारे पास अगर फिगर्स की कलेक्शन है, हमारे पास कोई भी एक रॉ मटेरियल मौजूद है, तो वो डाटा कहलाएगा। अगर हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं, एक फ़िल्टर कर लेते हैं, थोड़े से फार्मूलाज अप्लाई कर लेते हैं उस पर, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो इन्फॉर्मेशन है। मुख्तसरन इसको मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ कि एक क्लास है, एक क्लासरूम है, और हमारे पास तमाम बच्चों के रिजल्ट्स मौजूद हैं नंबर्स की शक्ल में। अगर हम उन नंबर्स को परसेंटेज में निकाल लेते हैं, उनको ग्रेड्स में डिवाइड कर लेते हैं, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक शीट पे ले आते हैं, तो जो हमारे पास उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आएगा, जो उससे हम नतीजे अखज़ कर सकेंगे कि कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी क्लास कैसे परफॉर्म कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन होगी। तो इन्फॉर्मेशन और डाटा का एक लिंक समझना बड़ा ज़रूरी था, बिग डाटा। अब हम ज़रा आते हैं कि बिग डाटा क्या है, टेक्नोलॉजी में इसका क्या रोल है। बिग डाटा से مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا عام الفاظ میں, اور اس کی بہت زیادہ کلیکشن ڈیٹا کی, اور اس کی پھر پروسیس کر کے اس کو انفارمیشن میں بنانا. باقی اعظم, آپ کا کیا خیال ہے بگ ڈیٹا کے بارے میں؟
2: بالکل نبیل بھائی, اس طریقے سے آپ نے پہلے ڈیٹا کی بات کی, تو مجھے ڈیٹا کی آپ کی بات سمجھ کے اتنا تو آئیڈیا ہو گیا کہ ڈیٹا آپ کسی انسان کو سمجھنے کے لیے اور اس کی انفارمیشن کو نکالنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہو ڈیٹا, تاکہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, کیسے کہہ رہا ہے. اب جہاں پہ انڈسٹری کی بات کی جاتی ہے اور بگ ڈیٹا کی بات کی جاتی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈسٹریز, جو ایک ایگریکلچر کی انڈسٹری ہے, جو ایک ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے, جس طریقے سے وہ اس کو استعمال کرتی ہے, وہ آئی تھنک, مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے اور انسانوں کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بگ ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے. ہر روز ٹریلینز کے حساب سے ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اوور دا ورلڈ, ٹھیک ہے, جس میں انسان کیا کرتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پہنتا ہے, اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ انفارمیشن جو انڈسٹریز والے لوگ ہوتے ہیں, جو کہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں, جو کہ انڈسٹریز چلا رہے ہیں, ان کے پاس ان کا ڈیٹا سارا جاتا ہے. وہ ایک ڈیٹا سارا پروسیس کرتے ہیں اور آپ کی میری دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کا انٹرسٹ کیا ہے. فار ایگزامپل, اگر میں ایک کلوتھنگ برانڈ کی بات کرتا ہوں, ٹیکسٹائل ایک مل کی بات کرتا ہوں, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کرتا ہوں, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک کسٹمر کو سمجھنے کے لیے, کسٹمر کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کے ڈیٹے کو وہ استعمال کرتے ہیں, اس کے ڈیٹا پورا نکالتے ہیں وہ کہ وہ اس بندے کے انٹرسٹ کیا ہیں, وہ پورا دن استعمال کیا کرتا ہے, وہ پورا دن کیا کھا رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, وہ کس طریقے کا ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہے, وہ کس طریقے کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتا ہے, پھر اسی کے اکارڈنگلی ہی اس بندے کو وہ اسپیسیفک ایک اس کا جو آرٹیکل ہوگا ان کا, جو ان کو پتا ہوگا کہ یار اس کو یہی چیز پسند آئے گی, وہی اس کے سامنے شو کریں گے انسٹاگرام کے تھرو, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ پلیٹفارمس کے تھرو. تو نبیل بھائی, آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے کہ یہ جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, یہ کیا انسان کی بہتری کے لیے اور انسان کو مزید فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یا تو اس سے کسی انسان کا غلط نقصان بھی کیا جا سکتا ہے ڈیٹا کی مدد سے؟
3: بالکل اعظم, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ڈیٹا کو ایکسپلین کیا, اور اس کا انڈسٹری میں آپ نے اس کا یوز بھی بتایا. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے گزشتہ اپنے تمام ایپیسوڈز میں بات کی, اور جیسے ہم نے ابھی بھی بات کی, کہ ہر چیز کے اپوزٹس ہوتے ہیں, اور یہی دنیا کی خوبصورتی ہے کہ اگر اچھا ہے تو برا بھی ہے, اور اچھائی یہی ہے کہ خوبصورتی بھی یہی ہے کہ وہ برے سے کرتا ہوتا ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا کہ اس کے کیا فائدے ہیں ڈیٹا کے اور بگ ڈیٹا کے, اور کیا نقصانات ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ اس پر میں آپ کو مزید ایکسپلین کروں گا, اور آپ کو بہت اچھے سے اس پہ بات کریں گے. یہ بہت ایک ہاٹ ٹاپک ہے, اور میں تو بہت دنوں سے اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. ہم ایک شارٹ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.

0: Entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6. UCP ki duniya. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीबी की दुनिया प्रोग्राम नई दुनिया में आपका खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डेटा पे, बिग डेटा पे, एल्गोरिदम्स पे, कि डेटा क्या होता है, क्या क्या नहीं होता और इंडस्ट्री में उसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। नबील भाई, अब इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, टेक्नोलॉजी ऐसी जो कि बहुत सी जगहों पर फायदा पहुँचा रही है इंडस्ट्री में?
1: जी आजम, बिग डेटा पर हमने ब्रेक से पहले बात की और बिग डेटा का हमने थोड़ा सा इस्तेमाल देखा कि किस तरह वो इस्तेमाल हो रहा है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज में, मार्केटिंग में, एक गैप समझने के लिए, लोगों के पेन पॉइंट समझने के लिए, ताकि प्रोडक्ट को वो उस तरह तैयार कर सकें। और ये तमाम चीज़ें, बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन अगर हम चीदा पहलू देखें, थोड़े से ब्रॉड पहलू देखें जिन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी, तो मेरे ख्याल से हम ड्रोन की बात किए बगैर नहीं रह सकते। ड्रोन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत मुख्तलिफ अंदाज़ में उसकी कंट्रीब्यूशन है। आपका क्या ख्याल है?
2: बिल्कुल नबील भाई, ऐसे ही है। ड्रोन की जहाँ तक बात की जाए तो ड्रोन आज से पहले, अगर आप पीछे दौर में चले जाएँ तो ड्रोन आज से पहले सिर्फ इस्तेमाल होता था फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, मूवीज़ बनाने के लिए, शॉट्स को लेने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को लेने के लिए। मगर अब आपका क्या ख्याल है कि ड्रोन मूवीज़ इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है?
1: जी आज़म, एक तो जैसे कि आपने मूवी इंडस्ट्री की बात की, तो अगर हम तकरीबन एक दहाई पीछे चले जाएं तो मूवी इंडस्ट्रीज़ में भी ड्रोन्स नहीं इस्तेमाल हुआ करते थे, और हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि तब हेलीकॉप्टर्स पर शॉट्स लिए जाते थे, एरियल शॉट्स लिए जाते थे, और मूवीज़ की जो एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा होता होगा, और ड्रोन ने इसको किस कदर ईजी कर दिया है और किस कदर बजट फ्रेंडली कर दिया है। आपने पूछा कि इसके अलावा किन पहलुओं में इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। आज़म, बहुत इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो हमारे देही इलाकों में लोग अपना एक सर्विलेंस रखने के लिए, अपने खेतों की निगरानी के लिए, खेतों का एक चेक रखने के लिए कि कहाँ पर पानी दिया जा रहा है, कहाँ पर बीज है, कहाँ पर फसल डैमेज है और हमने उसको रिपेयर करना है। आपने देखा होगा कि एक ग्रीन शीट लगाई जाती है, और किसानों में भी जो बड़े किसान होते हैं, जिनकी ज़मीनें ज़्यादा होती हैं, वो एकड़ों के हिसाब से ज़मीन होती है, और वो एक बंदा उसको, उसका सर्विलेंस, उसकी एक चेक नहीं रख सकता। बहुत एक इम्पॉसिबल चीज़ है ये। ड्रोन्स ने इसको पॉसिबल किया है। अब वो ड्रोन उड़ाया जाता है और एकड़ों की ज़मीन का जो एक मुहासरा है और एक जो एक चेक है, वो 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर कर लिया जाता है, और इससे बहुत एक एफिशिएंसी आ रही है। जो हमारी यील्ड है, जो एग्रीकल्चर की जो एक एंड प्रोडक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा जो एक प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, क्योंकि उसमें नुकसान कम हो रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
2: जी नवील भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। जो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कि यार ये चीज़ में किस तरीके से इंडस्ट्री में काम कर रही है, ये ड्रोन किस तरीके से टेक्नोलॉजी उसमें एग्रीकल्चर में किस तरीके से फ़ायदा दे रहे हैं, मगर देखा जाए तो जो आपने बात की कि एंड प्रोडक्ट की, तो ये आपका सबसे पहली बात है कि जितना ड्रोन अब जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़े फार्मर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल को देखने के लिए, जैसे आपने बताया कि एकड़ों के हिसाब से उनकी ज़मीनें होती हैं। और अब देखें ना, अब हर एक इंसान एक एकड़ का सफ़र तो नहीं तय करेगा ना, और पूरी वन बाय वन हर चीज़ को चेक करेगा। उससे होता ही है कि बहुत से, अगर इंसान करने भी चाहे तो उसमें बहुत से ऐसा होगा कि इंसान थक जाएगा, इंसान की जो पावर है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और बहुत से ऐसा होगा, जगह पर ऐसा होगा कि कोई ऐसी फसल होगी वो ख़राब हो रही होगी और इंसान की वहाँ से नज़र से उधर उधर हो जाएगी। तो ड्रोन ने इंसान के एक वक्त को भी बचाया और उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को भी बढ़ाया फसल की, और एक एंड प्रोडक्ट जिस तरीके से मार्केट में आ रही है वो ज़्यादा बेहतर होती है और ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन सी फसल किसको किस टाइम पे कितना पानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो एक एंड में जाकर कोई फसल लगी हुई है, कोई एक ऐसा पौधा जो कि ख़राब हो रहा है, तो वो हम ड्रोन की मदद से वो चेक कर सकते हैं। दूसरी बात नबील भाई, इसके ज़रिए से हम उनको एक बीज भी दे सकते हैं, जो एक पानी का जरिया होता है, वो छोटा मोटा उनको पानी भी वहाँ पर फराहम कर सकते हैं ड्रोन के जरिए, और कुछ बीज भी वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एकड़ का सफ़र तय करो और जाके एक फसल को जाके आप दो, बल्कि आप ड्रोन की मदद से आप उसको ओवरऑल आप उनको बीज प्रोवाइड कर सकते हो।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बीज की बात की, मैंने रिसेंटली ये देखा, कुछ बीज होते हैं जो इन डेप्थ उनको बोना होते हैं, वो तो जाहिर है उसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होगी, लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर ड्रोन्स की बात करें तो जो बीज फेंके जाते हैं पानी के अंदर और वो उसमें बहुत एफिशिएंटली जो है वो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सामाजिक राबतों की वेबसाइट्स पर और ऑनलाइन स्टोर्स की बात करें, एक बहुत प्रोमिनेंट ऑनलाइन स्टोर है जिन्होंने अपनी डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है। ये बहुत एक इनोवेटिव सी बात है, क्या ख्याल है आपके? आपने सुना है इस बारे में?
2: बिल्कुल नबील भाई, ऐसी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी बनाई ही इसलिए जाती है कि वो इंसान की जो एक मेहनत है उसको कम करने के लिए, इंसान का जहां पे एक सफर तय होता था हजारों किलोमीटर का सफर, उसको शॉर्ट करने के लिए, जहां पे इंसान सफर करता था कितने कितने दिन, उस सफर को शॉर्ट करने के लिए ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरीके से अगर आपने ड्रोन्स की बात की और जो डिलीवरी की बात की, तो ये देखें ना, उसने एक इंसान की एक पावर को कितना बचा दिया। जहां पे एक इंसान ने निकलना था और पूरा दिन उसने अपना टाइम लगाना था, डिलीवरी जगह जगह करनी थी, उसकी जगह ड्रोन ने ले ली है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान की जगह ले लेगी आने वाले वक्तों में?
1: नहीं, मुझे देखें, हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, फिर वही बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा। अगर होगा तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही होंगी। सर्विलेंस अगर हम उससे कर रहे होंगे तो बहुत से ऐसे पहलू भी होंगे जहां पर हमें ज़रूरत बढ़ जाएगी। इस तरह के मज़ीद टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। इसके हवाले से आदम शॉर्टली बताएंगे, इसके अलावा ड्रोन्स के अलावा आपको क्या लगता है कि किस टॉपिक पर हम जो है वो, इसके अलावा क्या ऐसा टॉपिक है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है?
2: नबील भाई, बात की जाती है तो बहुत सी चीज़ें जिस पर हम बात कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी जगह पर टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर टेक्नोलॉजी फ़ायदा नहीं दे रही। आप अपनी ओवरऑल अगर हम अपनी ज़िंदगी को ही एक देख लें, एक ज़िंदगी को एक पूरा नोट कर लें, अपनी एक डेली रूटीन को ही नोट करें, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी के बगैर हमारी ज़िंदगी क्या है। तो टेक्नोलॉजी तो एक इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका हुआ है और हर एक पहलू में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा, मगर हम स्पेसिफिकली एक से दो टॉपिक्स हैं वो बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

टिकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is 92.6.
2: जी सामीन, वेलकम बैक. और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सर के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप विन करने के लिए, और पाकिस्तान में रहते हुए जिन जिन चैलेंजेस का फेस करना पड़ा इनको, अभी हम उसके बारे में इनसे पूछेंगे. कि डॉक्टर इमरान, आपको पाकिस्तान में, आपको पता है, बहुत सी हर्डल्स, जब भी हम किसी अच्छे काम की तरफ निकलते हैं बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो पाकिस्तान में आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और आपने उनको कैसे कॉप अप किया?
3: मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की नहीं बात करनी चाहिए. इंसान जहाँ पर भी पैदा हुआ है उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है. और हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे से ज़्यादा चैलेंजेस सहे थे और उन्होंने ज़्यादा तकलीफें सही. तो वह इमाम इकबाल जैसा कहता है, खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह अब नहीं. तो इस तरह से अल्लाह ताला ने वो मौजें जो पैदा किए तो वो हमें मजबूत करने के लिए आती हैं. तो अगर हम सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम्स के और चैलेंजेस के मुतालिक बदल लें कि ये जो चैलेंज है, अगर मैं वजन नहीं उठाऊंगा तो मेरा जिस्म नहीं बनेगा. तो अगर हम चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझें तो हम ग्रो करते हैं, होप पैदा होती है और नेवर गिव अप की एक फिजा पैदा हो जाती है. और उसमें मेरा ख्याल, अगेन उसी बात पे मैं ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगा, जोर डालूंगा कि अपने दोस्त अच्छे करें. अगर आप अपने अच्छे दोस्त करेंगे, अच्छे लोगों को सुनेंगे, FM 92.6 को सुनेंगे, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. या फैकल्टी आवर को कम लोग ही देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि फैकल्टी ने बात करनी है. लेकिन अगर हम सुनना चाहें तो ऐसे प्रोग्राम भी सुन सकते हैं. और प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोग इतने बोरिंग भी नहीं होते जितना हमने बना दिया है.
2: जी डॉक्टर इमरान, नहीं, अब हमारा फैकल्टी आवर माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल जा रहा है और बहुत से लोग इसे सुनते हैं, बहुत सी उनकी राय भी हमें मिलती रहती है और हम उनके सजेशन को लेते हैं पॉजिटिवली भी, और उनको मजीद भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं. अभी तो लोगों को बहुत इंतज़ार होता है इस फैकल्टी आवर का. तो अभी जो आप ये कह रहे हैं कि बहुत कम सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बहुत इम्प्रूव हो गया हुआ है.
3: तो थैंक यू. तो आपका जो सवाल था मुझे अच्छा लगा कि चैलेंजेस, अगर मैं वैसे इस चीज़ को अगर सही तरह से कहूँ तो चैलेंजेस ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं. और अगर हमने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना हो तो कंफर्टेबल लाइफ गुजारना शुरू कर दें. वो बच्चे जो हर तरह के कंफर्ट में रहते हैं, पैम्पर्ड होते हैं, एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं हर टाइम, वो चाहते हैं कि वो उनकी पूरी दुनिया उनकी खिदमत के लिए मामूर हो जाए, तो वो कुछ खास काम नहीं कर पाते हैं. जितनी भी ज़िंदगी में या दुनिया में तारीख में बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं या उन्होंने कोशिश की है, वो हमेशा चैलेंजेस की वजह से ही उभरे हैं. और मेरा अपना ख्याल है कि हमारे तलबा को जो पढ़ रही है तालीम के अंदर, उनको वो छोटे छोटे मसाइल को हमने बहुत बड़ा बना दिया हुआ है. और उसकी वजह ये भी है कि हर बंदा कंप्लेन कर रहा है, हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, हर बंदा ब्लेम कर रहा है. तो कंप्लेंट, बेशक मैं अक्सर क्लासों में भी कहता हूँ, तस्बीह भी पढ़ना शुरू कर दोगे कंप्लेंट्स की, तो कंप्लेंट करने से मसला हल नहीं होगा, मसले को हल करने से मसला हल होगा और सोचने से मसला हल होगा. जैसे रट्टा जो है उससे बाहर निकलने से मसला हल होगा और ये जानने से मसला हल होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक कैसे तरक्की याफ्ता हो गए. थोड़ा सा उसके बारे में गौर करेंगे, ये सवाल करेंगे कि वो भी, ये पिछले 200-250 साल की कहानी है, 200-250 साल की कहानी कहीं कॉस्मोस देख लें, नील डिग्रेस टाइसन का. अब तो हिंदी जबान में भी है, उर्दू जबान में भी है और AI का दौर आ गया है, कुछ भी जानना चाहें तो आप सीख सकते हैं. लेकिन उसके लिए चाहिए यही है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझें, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझें और मेहनत करें.
2: जी डॉक्टर इमरान, तो सर थोड़ा सा हम आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे सामीन के बताएं कि जब आप अमेरिका से वापस पाकिस्तान आए तो आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी थिंकिंग में, आपके विजन में क्या चेंज आया और आपने यहाँ पाकिस्तान में आके क्या आपने चेंज क्या लेके आए?
3: मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगरचे बहुत सारे लोग मगरब नवाज हो चुके हैं, वो दूर के ढोल सुहाने हैं, वो ये समझते हैं कि शायद अमेरिका जाने के बाद डॉलरों की बरसात हो जाएगी और ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी, वो दूर से नज़र आता है. लेकिन वहाँ पर मेरा ख्याल है लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं पाकिस्तान में. वहाँ पर जो आम आवाम है हमारे जैसे, वो ज़्यादातर वक्त और अपने काम को काम समझते हैं और वो काम को काम करवाया भी जाता है, मजाक भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं, लेकिन काम को काम समझते हैं. हमने काम को भी खेल कूद बना दिया है और खेल कूद तो पहले से ही खेल कूद है. तो और ये जो एक चेंज थोड़ा सा आता है और कल्चरल शॉक लगता है, ये कुदरती बात है. जब मैं वापस आया तो वहाँ पर ज़्यादातर काम ईमेल के ज़रिए से होता था, गुफ्तगु लोगों के पास वक्त नहीं होता है ज़्यादा बैठ के गप्पे मारने का, क्योंकि काम के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है. सरमायादाराना निज़ाम है, उसको समझना चाहिए. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जवान मौजूद है, नौजवान मौजूद है. पाकिस्तान की आबादी 23 साल से नीचे तकरीबन 12 करोड़ है, तो 12 करोड़ बच्चे हमारे पास हैं। इन 12 करोड़ बच्चों को अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से मुराद इनको ट्रेन करें, इनकी तरबियत करें, तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारे हमसायों वाले इंडिया और चाइना, वो इसी चीज को देखकर उन्होंने भी यही काम किया। वहां पर कुछ लोग पहले पढ़ने गए और फिर वापस आए और उन्होंने देखा कि हमारे मुल्क में ये चीजें बेहतर की जा सकती हैं, तो उन्होंने बेहतर की। और मैं उस तरह से सोचता हूँ, और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में वैसे चैलेंजेस नहीं है, जैसे कि ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो कि इतनी हमारे मजहब के हवाले से या हमारा जो ब्रॉटअप हुआ उसके हवाले से इतनी अफोर्डेबल नहीं है। वहाँ पर आप अपनी औलाद को रेज करना नहीं चाहेंगे कम्फर्टेबली, क्योंकि हमारी कुछ अपनी वैल्यूज हैं, उनकी अपनी वैल्यूज हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि इस जिस वजह से मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है। चैलेंजेस वो पहले भी पाकिस्तान वैसा ही था, अब भी वैसा ही है, और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान काफ़ी तेज़ी से डील हो रहा है। अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है, लोगों को आगाही ज़्यादा मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता चल रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ दस्तरस में है, जो चाहता है, और जो नहीं चाहता है तो उसके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज थी नहीं।
2: जी डॉक्टर इमरान, तो आप हमारी जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका काफ़ी विजन भी है, इंटरनेशनली भी आपने सारा विजिट किया और काफ़ी क्लोजली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को, स्पेशली हमारे यहाँ UCP में, क्या ऐसी चीज़ें हैं, किन पैरामीटर्स को आपको फौरन जो अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है, इस पर थोड़ी रोशनी।
3: अभी जो UCP की रीसेंट लीडरशिप है, वो खुद भी फुल फाइटर हैं, वो भी दुनिया देखा है, और जिस तरह से वो चीज़ों को चला रहे हैं, और उनका एम्फोसिस जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ है, क्रिएटिविटी की तरफ है, इनोवेशन की तरफ है, अंडरग्रेड प्रोग्राम्स को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ है, तो UCP ऑलरेडी एक रोल मॉडल बना हुआ है दूसरी लाहौर की यूनिवर्सिटियों के लिए। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर परफेक्ट है, यहाँ पर चैलेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी हैं और हर जगह पर होते हैं। इवन बेहतरीन से बेहतरीन इदारों में भी हमें लगता है कि कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ मसला होगा, और इंसान को पैदा इसलिए किया गया कि उन मसलों को हल करे, ना कि मसलों का अवेला करे। यूनिवर्सिटीज़ को ये अडॉप्ट करना चाहिए कि हमें रटे से बाहर निकलना चाहिए, और जब जिंदगी में रियल लाइफ में अगर मिसाल के तौर पर मैं घर जाता हूँ और UPS ख़राब हो जाता है, तो वो MCQ नहीं बनेगा कि बताइए कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। वो तो कहेगा भाई मुझे बत्ती ला कर दो, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब हमें आम जिंदगी में जिस तरह से सवाल आता है, तो वो सवाल जो है वो कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता कि इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसका ट्रू फॉल्स करना है, या फिर इसका MCQ बनाना है, या इसका पैटर्न हमें पता चले। तो इसी तरह से अगर हम अपने मसाइल को देखें तो, और अपने तालीमी निज़ाम को देखें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, चाहे मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं फार्मेसी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये जानना है कि ये जो मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ इसका आम लोगों को या मुझे अपनी जात को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो उससे फिर आपका इंटरेस्ट भी पैदा होगा, और ये चीज़ तमाम तालीमी इदारों को करने की ज़रूरत है, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, और ऑलरेडी हो रही है, लेकिन वो उन खास मखसूस तबकात के अंदर हो रही है। जैसे अगर हम पाकिस्तान के जो स्नोबिश इदारे हैं, जो काफ़ी महंगे महंगे हैं, जिसमें साल की 10 लाख रुपए फीस है, वो UCP एक अच्छा काम ये कर रही है। अमूमन लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ब्लेम करते हैं कि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है कि इन्होंने हमारी यूथ को एक जगह पर कम से कम बिठा तो दी है। अगर ये भी ना होती तो पब्लिक सेक्टर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन बच्चों को संभाल सकता। अब चूंकि ये बच्चे आ चुके हैं, तो अब हमें ये चाहिए कि इन बच्चों को नई राह दिखाएं, नई उम्मीद पैदा करें इनके अंदर, और ये दिखाएं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। किसी भी शोबे में चले जाएं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखें तो हमारे पास सिर्फ 700 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, 25 करोड़ की आबादी के लिए 700 इंडस्ट्री है, जबकि ये नंबर ईजिली बढ़ाया जा सकता है, और हम इसको 5,000-6,000 पे भी लेके जा सकते हैं। वो कैसे लेके जा सकते हैं, जब हमारे फार्मासिस्ट उस समय रिटेन होंगे और ये सोचेंगे कि हमने सिर्फ दवाई जो है ना सिर्फ अपने मुल्कों को, अपने मुल्क के बाशियों को देनी है, बल्कि साथ में नेबरिंग कंट्रीज को भी देनी है, सायों मालिक को भी देनी है। तो उस तरह से अगर हम सोचेंगे कि जॉब करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि इस तरह से पढ़ना है कि हमने जॉब क्रिएट करनी है, फिर ज़्यादा फायदा होगा, मेरा यही ख्याल है।
2: जी डॉक्टर इमरान, अभी जैसे आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात की, तो अभी क्योंकि एक टाइम होता है हमारी एक शॉर्ट सी ब्रेक है, और इसके वापस आके हम इंशाल्लाह यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं और उनकी क्या क्या हैं सारी चीज़ें। जी सामीन, कीप लिसनिंग FM 92.6 एंड लेट्स टेक अ ब्रेक।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. تو جی ڈاکٹر عمران, آپ سے ہماری بات چل رہی تھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے. تو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بایو ٹیک مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں, آپ ان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, کیا ان کا اسکوپ ہے, کس طریقے سے اور یہ کتنا کو کام کر رہی ہیں؟ پاکستان میں کتنی بایو ٹیک پروڈکٹس ہیں جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, مینوفیکچر کر رہے ہیں؟
2: تھینک یو میڈم تحسین, اچھا سوال ہے. پاکستان میں ہر جگہ پر اپرچونیٹی ہی اپرچونیٹی ہے. ہم اپنے حفاظتی ٹیکے ابھی تک خود نہیں بنا سکے. ہم بایو ٹیک جس کو ہم ویکسینیشنز کہتے ہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو اتنی زیادہ جگہ ہے کام کرنے کے لیے. اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو اسی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ ایوینیوز ہیں جن میں ہم تحقیق کر کے اور انویسٹمنٹس لا سکتے ہیں. لیکن ہمیں ابھی یہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم انویسٹمنٹ کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس انڈسٹری کی وجہ سے دوسری دنیا کے ممالک کتنا پیسہ بنا رہے ہیں. اور یہی ہمارا فیوچر ہے. ابھی جیسے بایو ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت سارے پروگرامز ہیں, اور فارماسیوٹکس جو فارماسیوٹیکل سائنسز جو ہے یہ خود بخود ایک پوری دنیا میں 2004 سے پہلے فارماسیوٹیکل انڈسٹری نمبر ایک پہ تھی, اور پھر آئی ٹی کے بعد یہ ابھی آج بھی نمبر دو پہ ہے. پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے اس حوالے سے. ابھی ویسے کوئی نہیں ہے, بہت کم ہیں, شاید انگلی پہ گنی جا سکتی ہیں جو انڈسٹریز ہیں, اور وہ بھی را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہیں اور اس کو پیکج کر کے آگے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. جو انڈسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے, اگر میں انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے دیکھوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بندہ دیں جو کام کا ہو. اور وہ کام کا بندہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہم تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں یا تعلیمی اداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہمارا زیادہ فوکس گریڈز کے اوپر ہوتا ہے, زیادہ فوکس جی پی اے لینے پہ ہوتا ہے, اور سیکھنے کے اوپر اور ریئل ورلڈ کے پرابلمس کو سالو کرنے کے اوپر نہیں ہوتا. پاکستان میں بہت زیادہ گنجائش ہے نئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری بنانے کی, ادویات نئی سے نئی بنانے کی, اور پھر ان کے بعد ان کو پاکستان میں سستے داموں بیچنے کی, اور اس کے علاوہ باہر کے ممالک میں اس کو ایکسپورٹ کرنے کی. میرا یہ اپنا نظریہ ہے, اور میرا امید ہے مجھے کہ بہت زیادہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, جیسے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی SMEDA. بہت کم لوگ, شاید پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس طرح سے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے, TDAP, اور پھر HEC جو کام کر رہی ہے اس وقت, ہائر ایجوکیشن کمیشن, وہ بھی اسی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں مینوفیکچرنگ کی طرف آنا پڑے گا, ہمیں کچھ نہ کچھ بنا کر دنیا کو دینا پڑے گا. اور ہم زیادہ دیر تک قرضوں پر نہیں چل سکیں گے, ہمیں اب خود سے کچھ بنانا پڑے گا اور بنا کر دنیا کو اور اپنے پاکستانی جو دوست یعنی کہ جو پاکستانی عوام ہے ان کو دینا پڑے گا.
1: جی بالکل ڈاکٹر عمران, ابھی جیسے ابھی ہم نے بات کی اسٹوڈینٹس کی بھی, اور یہ کہ ہم اپنی ایک ٹپیکل ایک تھیوریٹیکل نالج کو ہم کمرشلائز یا ہم انڈسٹری کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جیسے اب UCP سے ہم خود ایک فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہم فیسلٹی وائز تو کافی اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ان کو فیسلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سم ٹائم اسٹوڈنٹس میں ایک فیئر ہوتا ہے ریسرچ کو لے کے, کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریسرچ آتی نہیں ہے, یا ہم ریسرچ کیسے کریں, اسٹارٹ کیسے کریں. تو اسپیشلی انڈر گریڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو ان کی آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کو کیسے آپ گائیڈ کر سکتے ہیں؟
2: تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو لفظ ہے لفظوں سے باہر نکلنا پڑے گا. اب ریسرچ کا نام ذہن میں آتے ہی ہمیں آئنسٹائن یاد آ جاتا ہے یا نیوٹن یاد آ جاتا ہے, حالانکہ ریسرچ ایسے نہیں, ہر بندہ ریسرچ کر رہا ہے, ہر دن ریسرچ کر رہا ہے. ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو ریسرچ کرتے ہیں, تو چیز خریدتے ہیں, جوتی بھی خریدنی ہو تو پہلے 10 جوتیاں دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی جوتی پہنی اور کون سی نہیں پہنی, اسی کو تحقیق کہتے ہیں. اب اگر اسی یہ تحقیق جو ہے وہ ہم ہر گھر ہر فیصلے میں کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے اگر کہیں سفر کرنا ہو تو ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ سستی مل جائے گی چیز, کون سی ایئر لائن پہ سستی چیز مل جائے گی, نمبر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کیا چیز ہوگی وہاں پر کیا چیز ہوگی. اسی چیز کو جب ہم علمی طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی ریسرچ ہی کہتے ہیں. لیکن ہم نے ریسرچ کو ایک پیپر چھاپنے کا ذریعہ بنا دیا ہے, جو کہ ٹھیک ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو پرچہ ہم لکھ رہے ہیں یا جو ہم تحقیق کرنے کے بعد پرچہ لکھ رہے ہیں, اس کا عملی زندگی میں انڈسٹری کو صنعت کو کیا فائدہ ہوگا, اور اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اور جو تحقیق کو سمجھانے کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو, کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بہت مشکل کام ہے, تحقیق ہر کوئی کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کیوریس ہی پیدا ہو گئے ہیں. کسی بھی بچے کو میرا نہیں خیال کہ کہا گیا ہو کہ سوال پوچھ جب وہ پیدا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب وہ تعلیمی نظام میں آتا ہے تو اس کے سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں. تو ہمارا کام ایز اے ریسرچر یہ ہے کہ ان کے اندر وہ دوبارہ سے جستجو پیدا کی جائے, کیوریوسٹی پیدا کی جائے, اور وہ دیکھیں کہ دنیا کیسے چل رہی ہے, और उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें, उन मालूमात से फिर किसी मेंटोर के साथ जो कि पहले से तहकीक कर रहा है उसके साथ जुड़ा जाए। और पाकिस्तान हमारी फैकल्टी फार्मास्यूटिकल साइंसेज हवाले से मुनफरिद फैकल्टी है पूरे लाहौर के अंदर, के यहाँ पर सबसे ज्यादा PhDs हैं इस फैकल्टी के अंदर, और इसके अलावा हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है हमारी। हर बंदा जो है वो बहुत काबिल है और बाहर से पढ़ गया है, कोई अमेरिका से पढ़ के आया, कोई जर्मनी से पढ़ के आया, कोई फ्रांस से पढ़ के आया, कोई चाइना से पढ़ के आया। तो तलबा को चाहिए है, और तलबा हम कर भी रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इवेंट करवा रहे होते हैं, अवेयरनेस दे रहे होते हैं। अब स्टूडेंट के अंदर जो डर है उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के जो सेशंस हैं वो हम करने चाहिए हैं और उनको बताना चाहिए। अब हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी रिसर्च कर रहे हैं, और उनको सिखाया जा रहा है समर रिसर्च प्रोग्राम के जरिए से कि किस तरह से तहकीक जो है वो अमली ज़िंदगी में फ़ायदा देती है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तहकीक ही करके कोई फैसला लेते हैं, और इवन हमारे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी तहकीक करके ही फैसला करती हैं। तो इस जगह पर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हमारे पास डेटा इकट्ठा हो और वो डेटा जो है उसकी बुनियाद पर हम फैसला साजी करें।
1: जी सर, तो अभी आजकल जैसे आपको पता है कि AI का ज़माना है, अभी आपने मेंटोरिंग की भी बात की कि मेंटोर्स होने चाहिए, तो आप अपनी जो स्टडीज़ के अंदर, आप अपनी क्लास के अंदर, या आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे AI के लिए या कोई ग्लोबलाइजेशन जो मॉडल्स जो हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं?
2: मतलब सबसे पहले तो एक टूल आ गया, टूल है, जैसे आप ये समझे कि कैलकुलेटर आया तो वो एक टूल था, अब वो कैलकुलेटर तरक्की करता करता कंप्यूटर बना, कंप्यूटर बनने के बाद फिर अब इंटरनेट भी आ गया। इंटरनेट 1995 में आया लेकिन आवाम ने उसको सीखना शुरू किया 2010 2012 में 2015 में, और अब तकरीबन हर छोटे से छोटा बंदा भी है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। अभी एक नई चीज़ आ गई जिसको AI कहते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि AI शायद उसको 30 साल नहीं लगेंगे पेनिट्रेट करने में तमाम लोगों को, इस्तेमाल हर बंदे के इस्तेमाल में आ जाएगी शायद 3 से 4 या 5 साल के अंदर। और उसका फ़ायदा ये है कि अब इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, मालूमात बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन मालूमात से मानी अखज करना ये हमारा काम है। मैं अपनी क्लासेस में क्या करता हूँ कि इन टूल से आशना करवाता हूँ, मतलब जैसे जेमिनी है उसके बारे में बताया और फिर प्रैक्टिस करके दिखाया कि देखो बेटा ये ऐसे हो रहा है। तो जब वो देखते हैं तो वो खुद क्यूरियस होते हैं, और वो फिर ना सिर्फ मेरी ही क्लास के मुतालिक वो चीज़ें तो सवाल करते हैं बल्कि दूसरी क्लासेस के अंदर भी और अपने दूसरे भी मामलात के लिए वो AI को यूज़ करते हैं। अब इसका एथिकल यूज़ होना चाहिए। अब मकसद यह है कि हमारा हम आसानी की तरफ भागते हैं, इंसान हमेशा से आसानी की तरफ भागता है, लेकिन मालूमात जब मैं लाइब्रेरी में चला जाऊँ और बहुत सारी किताबें हों, तो अभी तक PK वाली कोई साइंस डेवलप नहीं हुई है कि वो कोई किसी को टच करे और उसके अंदर सारा इल्म ट्रांसफर हो जाए। तो इल्म हासिल करना तो खुद ही कर पड़ेगा, मैं अपना खाना मुझे खुद ही खाना पड़ेगा, कोई मेरे लिए खाना तैयार करके अच्छा करके वो मेरे सामने तो रख सकता है लेकिन अल्टीमेटली खाना मुझे ही खाना पड़ेगा। तो इसी तरह से मालूमात तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उन मालूमात को समझना और उनके दरमियान में ताल्लुक पैदा करना और ताल्लुक पैदा करके कुछ मसाइल को हल करना ये अब अहम ज़रूरत बन गया है। और AI के इस्तेमाल से हम ये काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोग जो है वो कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने अभी $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अरब के अंदर, आजकल UAE के अंदर आज के दिन AI वीक मनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, और इसको जो जल्दी अडॉप्ट करेगा वो कुदरती तौर पर सीखना चाहिए, लेकिन सीखने का तरीकाकार नहीं बदलेगा। मतलब ये समझा जाए कि शायद AI खुद बखुद ही सिखा देगी, ऐसा नहीं होगा। AI की मदद से हमें सीखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। आज के दिन में जो सबसे अहम और कीमती चीज़ है वो सवाल पूछना है। जब आप सही सवाल पूछना शुरू करते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 6 महीने का कोर्स करवाया जाता है जिसमें सिर्फ सही सवाल पूछने की ट्रेनिंग दी जाती है, और वही कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी तरह से बच्चों को सही सवाल की तरफ लगाया जाए, उनसे पूछा जाए कि कैसे काम चल रहा है।
1: जी सर, माशाल्लाह आप एक बड़े
2: सीरियस हो गए
1: नहीं सर, इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप माशाल्लाह बड़े एक पैशनेट, एक रिसर्चर के साथ साथ एक बड़े डेडिकेटेड टीचर भी हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, और कोई माशाल्लाह बहुत कोई रिसर्च में कोई आगे, कोई बड़ा नॉटी, कोई बड़ा तो आप जो क्लास में कोई जो डल स्टूडेंट्स हैं, जो आप फील करते हैं कि बड़े डाउन से बैठे हुए हैं,
2: मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती होते हैं,
1: उनको आप कैसे, मतलब उनको कैसे एक्टिवेट करते हैं, आप कैसे उनको इंगेज करते हैं क्लास के अंदर?
2: उनके साथ उन जैसा थोड़ा सा बनना पड़ता है, और वो बच्चे ज्यादा कीमती होते हैं। अगर हम देखें तो ये जो बैक बेंचर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो ये ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ रहे होते, ये आते हैं सीखने के लिए, ये आते हैं खेलने के लिए भी आते हैं, लेकिन अगर इनकी एनर्जीज को खेल खेल के अंदर पढ़ा दिया जाए। अब गेमिफिकेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा तालीम के अंदर भी चेंजेस आ रही है कि हम गेम्स के जरिए से भी बच्चों को खिला सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं उनको, कि भाई उनको थ्रो कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उनको कि ये काम कैसे होगा, और वो फिर उनको तहकीक पर लगा सकते हैं, उनको असाइनमेंट्स ऐसी दे सकते हैं जो कि उनके लिए यूजफुल हों। तो वो जो इंगेज अमूमन खुद भी, पहले तो ये है कि उस्ताद को जरा उस्तादी से निकलकर आम बंदा बनना पड़ेगा कि वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ ना समझे, वो भी आपको अपने आप को एक तालिबे इल्म ही समझे। तो जब तालिबे इल्म बनकर ही उस्ताद अपनी क्लास में जाएगा तो वो फिर एक जो हेजिटेशन है स्टूडेंट की वो खुद ब खुद ही ख़त्म होगी। तो इसमें टीचर्स को भी थोड़ा सा रोल प्ले करना चाहिए कि वो उस्तादी के अपने आप को उस्ताद उस्ताद या सेलिब्रिटी बनाने की बजाय कोशिश करें कि बच्चों के लेवल पर आए और बच्चों से गुफ्तगू करें, और जैसे हम अपने बच्चों से घर पे गुफ्तगू करते हैं इसी तरह से इनको बच्चों को भी अपना बच्चा समझेंगे तो यकीनन उनके दरमियान में जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी।
1: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी खूबसूरत बातें की हैं, और आई होप कि हमारे सामीन ने बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत चीज़ें आपसे लर्न की होगी। मैं खुद यहाँ पे बैठी हुई एज अ होस्ट आपकी बहुत मोटिवेट हो रही हूँ आपकी बातें सुन के जी। और इसके साथ ही अब हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, और अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त, और हमारा सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।

0: सुर और ताल,
1: सुर और ताल,
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
1: और तकरार,
0: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 24/7 only on FM 92.6 New City ki duniya.
1: मौसीकी के सुर और ताल,
2: सुर और ताल,
1: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
2: और तकरार,
1: सियासत से दूर लेकिन
2: मस्ती के पास
1: सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
3: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौड़ताल सुरौड़ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 ओनली ऑन एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: सूफी सिंग्स हू दैट व्हिच इज, दैट व्हिच वाज, दैट व्हिच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان یوسیپی.
3: این صدای لاهور است، این صدای یوسیپی است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان یوسیپی.
4: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.
5: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। Public service message by Faculty of Media and Communication Studies, University of Central Punjab.
6: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
3: इन सदाए लाहौर, इन सदाए UCPS। लुत्फान गुश बदहित FM 92.6 जहाने UCP।